नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

तू थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: स्टिक्टिंग अभियन स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Rasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag में Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes and Beats. Rasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको जो भी कामकाज दिलाना है स्टूडियो मेल ना info@ujalapinthnow.com

0: Stichting Abhiyan Stichting Swadesh और Shri Lakshmi Narayan मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Welcome by Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full service Indian wedding center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33.

या आखिर गनवा है गा कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा ना था मार संजय जो है तो नाउ द वर्सी फॉर हमार नेचुरली तनी ब्रोकन हार्ट हो गया गनवा कि जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा था जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा याद आना दबाई खुशखाए तो तब छुट्टी छुट्टा हो गया उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो शुरू हो गया है एंड ik wacht natuurlijk op die man die mij laat wachten han dan ik haar regen de headlines is al verteld aan jullie aaj ke samachar humne aapse bata diye hai और समाचार है और अनुभव है मतलब बिस्प्रेक नतुलक मेट आनंद चंद्रिका सिंह जी करदा है माइन हार्ट फलंग एरनार एक्ट वार वारनार तू सोचो से वारनार फलंग माइन हार्ट तेनु कॉल बैठावा जी करदा अगर अगर मतलब है कि माइन हार्ट फलंग एरनार एक फलंग एरनार ओम ये दिख नाश में तलाते सिते जी करदा तेनु कॉल बैठावा जी करदा

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में आप सुने फिल्म कैप्टन की शोर का गीत और ये उजाला रेडियो है। मुकेश जी हिस्सा ले रहा है।

जल मिले नदी के जल में, और नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। मुकेश जी की आवाज़, फिल्म अनोखी रात से गीत को आप सुनें।

लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हो।

0: के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: बने रहिए उजाला रेडियो पर म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Stichting Abhiyan. Stichting Swadesh और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुश दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।

उजाला रेडियो आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

उजाला रेडियो अभी थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा. वही प्रोग्राम, इसका नाम है कॉफी चाय मिदख शो. सुंदर रहना.

अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ नतीलक बात बन जाए तो अगर तू हमारी जिंदगी में आई है। यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनो वाला। और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं वही शख्स को जिसका नाम है सुजल उमराव। और सुजल उमराव इज ओक अवेलेबल फॉर ब्रासफेस 29 एंड 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर देनार में। ए सुगा

कॉफी चाय मेरा शो हाँ सुगा ये है सुजलुमराव इस ओका वेस हो उजालास ब्रासा मेला फेस्ट zaterdag 29 en 30 augustus. Koop je tickets via brazafest.nl. Goedemiddag allemaal. Mijn hoe luid maar weer. Abitur ideer met zaterdag in

या अहलक गनवा है गा कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा ना था मार संजय जोधा है तो राउंड फेयर शिफा हमारे नतीलक तनी ब्रोकन हार्ट होगी गनवा कि जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा था या जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा याद आना दबाई खुशखाई दो तोख तब छुट्टी छुट्टा हो गया उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदाग शो शुरू हो गया है एंड एक वक्त नतीलक अपनी मां दी मैं लात वक्ते हमने कहा रहेगा The headlines is all vertelled aan jullie. Aaj ke samachar humne aapse bata diye hain. Aur samachar hai aur onderwerp hai matlab bespreek natuurlijk met Anand Chandrika Singh. Ji karda hai. Mijn hart verlangt ernaar. Echt waar? Waarnaar? Toen soch je zeggen waarnaar verlangt mijn hart. Tenu kol baithawa ji karda. Ook matlab hai ki mijn hart verlangt ernaar. Ik verlang ernaar om je dicht naast me te laten zitten. Jikarda, jikarda, tenu kol baithava, jikarda.

0: Stichting Abhiyan. Stichting Swadesh और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार, यह है यू आर उजाला रेडियो। कुछ मिले जुले संगीत के साथ एक बार फिर से हम हाजिर है, और इस बार है कुणाल गांजावाला की आवाज में ये सिलेक्शन, कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए सनम। हमारे सभी श्रोताओं को शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे।

कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए। सनम आपने भी सुने है कुनाल गांजावाला और उस साथियों की आवाज में। एक साउथ इंडियन सॉन्ग हम आपको सुनाने वाले हैं, कोंकणी लैंग्वेज है और इस बार सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। कलजा मतलब क्या है मुझसे मत पूछो।

सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब के आवाज में आप अभी सिलेक्शन सुने हैं। मिले जुड़े संगीत में लीजिए पेशी खिदमत है फिल्म का नाम तेरे नाल लव हो गया। श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए तेरे बिन देयर इन नो डिजायर, तेरे बिन माय वर्ल्ड्स ऑन फायर, तेरे बिन आई कैन फ्लाई हाई हाई एंड हायर। लीजिए श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला की आवाज़।

Terebin, There Ain't No Desire. Terebin, My World's on Fire. Without You, My Dear. Kunal Ganja Wala Ki Awaaz. Film ka naam Bhagam Bhag. Our station ka naam hai You Are Ujala Radio. Tu jaane hai to. बस आपकी खिदमत में स्टूडियो में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार लेकर कुछ मिले जुड़े संगीत कुछ मिक्स मक्स सॉन्ग्स और ऐसे में बिन तेरे क्या है जीना

सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है तेरी प्यास है, हर प्यास में दर्द है सनम, ये दर्द तेरा एहसास है।

जुड़े संगीत में उजाला रेडियो के जरिए लीजिए पेश खिदमत है उदित नारायण जी की आवाज। फिल्म का नाम कोई आपसा, सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में तुम हो ना।

सीने में दिल, दिल में धड़कन। हम आपको कुछ मिले जुले सिलेक्शन सुना रहे हैं, इसमें भी कुछ रोमानी नहमो हम आपको सुना रहे हैं। सीने में दिल, दिल

मुझ में तू, तू ही तू बसा, मुझ में तू, तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना। कुछ इस तरह से सिलेक्शन है, आइए मिलकर सुनते हैं मुझ में तू, तू ही तू बसा।

0: मुझ में तू, तू ही तू बसा। फिल्म का नाम स्पेशल 26।
1: उजाला रेडियो, रेडियो तू जाने है तोह तोह।
0: ओहो सिंहरिता,
2: किन रे तू?
0: सी सी
2: ब्याह था।
0: ओहो
2: एरे

0: ना मैं समझा ना मैं जाना,
1: बिल्कुल नहीं।
0: जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों।
1: फिल्म का नाम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा
0: है

मजेदार सिलेक्शन आपके मध्य में प्रस्तुत की गई है उजाला रेडियो के जरिए। आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार लेकर कुछ मिले जुले संगीत। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। हम आपको और भी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं, जैसे कि ये वाला, और फिल्म का नाम है उमराव जान। जिंदगी जब भी क्या करता है, आइए मिलकर सुनते हैं सिलेक्शन में।

जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। लीजिए द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, सोनू निगम जी की आवाज में, तुम पे ही मरता है ये दिल, फिल्म का नाम से यस टू लव।

तुम पे ही मरता है ये दिल, तुम पे ही कुर्बान है ये दिल। सोनू निगम की आवाज आप अभी सुने हैं फिल्म का नाम से यस टू लव। उजाला रेडियो का पैगाम है। वैसे रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं एमस्टरडैम में 020 409 08 07 पर।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: सदा खुश रहे तू।
1: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

उजाला रेडियो अभी थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा वही प्रोग्राम, इसका नाम है कॉफी चाय मिदख शो, सुंदर रहना।

जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ नतीलक बात बन जाए तो, अगर तू हमारी जिंदगी में आई है। युवा उजाला रेडियो ये है, सुनो वाला उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं वही शख्स को जिसका नाम है सुजल उमराव। और सुजल उमराव इस ओक आवेजिंग ऑफ ब्रासरफेस 29 एंड 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर देनाग में। ए सुगा